0: ची यौन जैसा मैंने यौन स्वादे सी तो बाला बाहू बाला बाहू बाला बाहू स्वादे सी तो बाला देवा बाला देवा बाला देवा स्वादे सी तो बाला बाहू बाला बाहू बाला बाहू स्वादे सी तो बाला देवा बाला देवा बाला देवा
1: sensual movimiento sensual sensual
0: un movimiento muy sexy
1: sexy
0: un movimiento muy sexy
1: sexy
0: y aquí te viene azul azul con ese baile que es una bomba.